अभिलाखी, बेटी नेहा नागपाल, पिता स्वर्गवासी सुभाष नागपाल, माता उषा नागपाल, सतगुरु जी कृपालता की आप जी ने सरदार मनुप्रीत सिंह अते बीबी नेहा नागपाल जी का शुभ आनंद कारज आप जी की दसी मर्यादा अनुसार

मेरे पास इस स्पैशल मौके दे उत्ते वैसे तो परिवार के सदे ते आप सब दोस्त रिश्तेदार मित्र दुनिया के हर कोने तो मैं कल वहाँ इंग्लैंड अमेरिका चाइना इंडिया तो ते आस्ट्रेलिया के वख वख शहरों तो इत्थे पहुँचे हुए हैं। आप सबना नू परिवार दे वल्लों आपदा कदम कदम चल के आए हैं जी आतके जी धन्यवादी हाँ आप जी दे जो इस खुशी दे मौके ते आप बच्चे ते बच्ची नू आशीर्वाद देन दे लई इत्थे पहुँचे हो। इस स्पैशल मौके ते साडे पास अति सत्कार जो गुरजीत सिंह जी आलूवालिया जो कि मनप्रीत दे मामा जी हैं मेलबोर्न तो विशेष तौर पर परिवार के साथ इत्थे पहुँचे हुए हैं। सो उन्होंने बेनती करांगा कि संगत नू मुखातब होण जी। उस तो उपरंत साढ़े पास स्पैशल तौर पर वीर जी शमशेर सिंह जी प्रभ आसरा तो वह भी पहुँचे हुए हैं उन्होंने आप संगत के सन्मुख होना है। सो सब तो पहला गुरजीत सिंह आलूवालिया जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: शुरू करना है।
1: पंद्रह मिनट रह गए हैं, उन्होंने शुरू करना, फिर चल पिया, ये नहीं होया।

घोर दुखियं अनेक हत्यं जन्म दारिद्रं मां बखियादं मिटांत सगल सिमरांत हर नाम। नानक जैसे पावक कास्ट पस मंग।

जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे, जय प्रसाद सुगंधित धन लावे है, जय प्रसाद बसे सुख मंदर, जय प्रसाद करे संग सुख बसना, जय प्रसाद रंग रस भोग, जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे है, जय प्रसाद सुख सेज सोई जय, जय प्रसाद सब जय प्रसाद तुझ सबको माने, जय प्रसाद तेरो रहता धर्म, प्रभ जी जपत दरगह मान पावे, जय प्रसाद आरो कंचन देही, जय प्रसाद तेरा उला रहत, जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, जय प्रसाद तुझ को ना पहुंचे, जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, जय प्रसाद भूखन पहरी जय, जय प्रसाद अश्व हस्त अश्वारी, जय प्रसाद बाग मिलख तना, जिन तेरी मन बनत बनाई, तिसे त्याय जो एक अलख है, जय प्रसाद करे पुन बहुदान, जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी, जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, जय प्रसाद तेरी नीकी जात, जय प्रसाद तेरी पत्र है, जय प्रसाद सुने कर्ण नाद, जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद हस्त कर चल है, जय प्रसाद परम गत पावे है, ऐसा प्रभु त्याग अवरकत लागो, जय प्रसाद तू

0: प्रकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी उच्चते उच्चा
0: माया अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पय
0: नानक जिन प्रभाव करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न पया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह।

0: पंडित के उपदेश जग जीवे,
1: हर की कथा हृदय बसावे,
0: सो पंडित फिर जो न आवे,
1: एक पुराण सिमृत बुझै मूल,
0: सुखम मैं जाने स्थूल,
1: चौवरना को दे उपदेश,
0: नानक उस पंडित को सदा देश,
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान,
0: चौवरना में जपे को नाम,
1: जो जो जपे तिसकी गत होए,
0: सार संपावे जन कोए,
1: कर कृपा अंतर उतारे,
0: बस प्रेत मुगत पाथर को तारे,
1: सर्व रोग का उखद नाम,
0: कल्याण रूप मंगल

0: दंड ज्ञानी
1: कई कोट किरपन कठोर कई कोट पर दर्प को हिरे
0: कई कोट पर दुख न करे
1: कई कोट माया श्रम माहे
0: कई कोट पर देश परम माहे
1: जित जित लाभ हो तित लगन तित तित लगना
0: नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट सिद्ध जदि जोगी
0: कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए
0: कई कोट पाथर बिरख निप जाए
1: कई कोट पवन पानी बैसंतर
0: कई कोट देश भूमंडल
1: कई कोट वेद के स्रोते कई कोट ससियर सूर नखत्र
0: कई कोट देव दान इंद्र से छतर
1: सगल समग्री अपने सूत तारे
0: नानक जिस जिस पावे तिस तिस

0: पाहे
1: कई कोट किए तनवंत
0: कई कोट माया में चिंत
1: जय जय पाणा तै तै राखे
0: नानक सब की प्रभु के हाथे
1: कई कोट पय बैरागी
0: राम नाम सब तिल लागी
1: कई कोट प्रभु को खोजंते कई कोट दर्शन प्रभु प्यास
0: मिलो प्रभु विनाश
1: कई कोट मांगे सतसंग
0: ब्रह्म तिल लागा रंग
1: जिनको जिनको
0: होए
1: आप सो प्रसन्न
0: नानक तेजन सदा तन तन
1: कई कोट खानी अरखंड
0: कई कोट आकाश ब्रह्मंड
1: कई कोट होए कई कोट

0: प्रकाश
1: कई कोट तत् के बेते
0: सदा निहारे को नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीवे है
0: हर पय सत्संग जीवे
1: कई कोट नाम गुण गावे है।

कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाओ ना जाने मेरा वाह। बोलो जी वाहेगुरु। अरदास इको ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाह दसवें प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लिए त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हो सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नान दावै ताए सब थाए हो सहाय। दसवा पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाए हो सहाय। दसा पातशाहियाँ दे जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपिया वंड छकिया देख चलाए ते गवाए देख के अन टिट कीता तिना प्यारियां सचियारें दिगमत ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्मे तो सीत ते बंद बंद कटाए खोपरे लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आर नाल चराए गए गुरद्वारे दी सेवा लई कुरबानी कीते धर्म निहारे सिखी केसा स्वासा नाल निवाही तिन्हां दे कमां दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुखोवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब साहेब खालसे जी के बोल वाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग टल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दे तार ते सेवा संभाल दा दन खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणे दे माण नेताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे हजूर आप जी चरणा कमल च अरदास है। पोता माता की आसीस निमखना विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीस। जीवत जीवत जीवत रहो राम रसायण नित उठ पीवो। हर हर हर हर रसना कहो दे मां वाका अनुसार सतगुर जियो। आज दर कर दे प्रीतवान सरदार गुरविंदर सिंह बीबी नाचीजी सतगुर जियो सेवक परिवार वालों अपने बच्चे अर्जुन सिंह दे जन्मदिन की खुशी नूं मुख रखदे होया आप दे चरणा कमलों का ओट आसरा लहे आज दे पावन पवित्र दरबार विच ग्रह विच सतगुर जियो दीवान सजे सजहो दीवान अंदर सुख से जाप किए गए हैं। इलाही कीर्तन होया चौपी साहब जाप किए गए आनंद साहब छे पुणे जाप किए गए बाणी पढ़दे कोलों सेवा करदे कोलों एक नहीं ने कहीं प्रकार के गलती भुल चुक देखे बख्शिश करनी अगत कृपा करनी शुद्ध बाणी पढ़ की समर्था बख्शिश करनी पढ़ी सोहनी बाणी का भाव समूह संगतां के हिरदे में बसाउणा सतगुरु जाप कृपा करनी समूह परिवार में आपसी मेल प्यार इतवाक बख्शिश करना बच्चों माता पिता दयागाकार उच्च विदात नेक जीवन जीवन कामयाबी बख्शिश करनी जिस मनोकामना लैके समूह परिवार ने आवरी चरणा कमलों का ओट आसरा परिवार के शुभ शुभ मनोकामनावान गुरमत मर्यादा अनुसार संपूर्ण करनिया घर भी दुखद ना सुखन सुखों के प्रकाश करने किरत कमाइया में बरकता पाने सतगुरु जी आई संगतान की हाजरी तिल फुल भेट हाजरी अपने दरते प्रवान करनी जी समूह संगतों तौरों करो नाम और गुरसिखी दात बख्शिश करनी सतगुरु सेवकों वालों आप जी हजूर पंचम कड़ा प्रसादी सद के हाजरा दर प्रवान हुए प्रसाद समूह संगत में वरताउण की आज्ञा बख्शिश करो सतगुरु जी। सेवकों वालों आप जी ने सतगुरु जी आप जी दरबार चाह पड़कौड़ा लंगर सद के हाजरा दर प्रवान हुआ प्रसाद समूह संगत में वरताउण की आज्ञा बख्शिश करो कृपा करो पवित्र बाणी च हुक्म साहब बख्शिश करके निहाल करो हुक्मना साहब अनुसार चलन की समर्था बख्शिश करो से प्यारे मेल जिन्हें मिले तनाव ताव नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला। वाहेगुरु जी की फतेह।
दोहरा आज्ञा पहिया काल की तवे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन भ्रिष्ट गगन ते पई सब हिन आन बधाई दई धन्य धन्य लोगन के राजा दुष्टन दाहा गरीब निवाजा अखल पवन के सृजन हारे दास जान मोहले हो उबारे कव्यो बाच बेनती चौपई

मूरछा निज कर दय करिय सब बैरन को आज संगरिय पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारी तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हो जो सदा हमारी पच्छा श्री अस्तु जो करिय हो रक्षा राख ले हो मोह रखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल बिक सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन कोशय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़ेला। सुनै गुंग जो जाहि, सुरस न पावई। सुनै मूढ़ चित लाई, चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै। हो जो याकी एक बार चौपई को कह। चौपई संबत सत्रह है, सहस पणिजै अर्ध सहस फुन तीन कहिजै। भाद्रव सुधी अष्टमी रववारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। स्वैया पाएगा।

सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहै हम एक ना जानियो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर।

हाँ जी समाप्ति। सो सतगुरु की हाजरी भरदा एक नहीं अनेक प्रकार दी त्रुटियां हो जांदियां ने। गुरु साहब और गुरु की संगत बख्शन जो जो कृपा करियो सो इनिया हाजरियां प्रवान करियो। संसार ते जो कोई चंगा कर्म करदा है प्यारियो उसका नाम सदा वास्ते अमर हो जाता है। जिस तरह आपां धारणा भी पढ़ते हाँ कि एक संसार ते जिहड़ा जन्म मरण तो रहत है वह अकाल पुरख वाहिगुरु आप है जिसने सृष्टि की रचना की है। ये सृष्टि का पसारा करके इस सृष्टि में आप ही समाया होया है। असी रोज़ आसे की आवाज़ सरवण करते हाँ, असी रोज़ जपजी साहब पढ़ते हाँ। जेड़े इंसान को सतगुरु का हुक्म मनन की जाच आ गई समझो उसका संसार से आना सफल है। हुक्मी होवण आकार हुक्म न कहा जाई, हुक्मी होवण जी हुक्म मिले वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दो सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे तो हुमे कहे ना कोई। असी सारे सवेरे जपजी साहब सरवण भी करते हाँ पढ़ते भी हाँ। वाहिगुरू कृपा करे संगतान होर महाराज जी बल बख्शन। जिस तरह साहब श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज बख्शिश करते ने, होए अकत्तर मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिव लाए, हर नामे के होवो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा विछाए। जिस तरह आप सब संगत सतगुरों के दरबार में नमस्कार करके बैठ के गुरु जसकार सुन रहे हो, सतगुरों सानू यही हुक्म है। जी असी कि दूर दरेडे किसी वहीकलों में या घर रहने साढ़े लागे गुरस्थान ने नज़दीक नहीं है, सानू अणगहली करन दी लोड़ नहीं। मैं कितने भी देशों विदेशों जावां संगत नू यही बेनती करदा ना तुसीं घर च बह के शामां नू 5-10 मिनट गुरमंत्र दा जाप ही कर लिया करो। संगती रोल विच बहुत वड्डा उसका तुहानू लाभ प्राप्त होवेगा, क्योंकि इंसान सुखां वास्ते दौड़दा दुखां वास्ते नहीं। कई वार असी सुख भालदे भालदे एक रस्ते पै जाने हाँ, उल्टे असी होर विपता च फस जाने हाँ। जे असी गुरु के नाल जुड़ांगे गुरु प्यार नहीं संगत करांगे, सतगुरां चरणां जाण के अरदास बेनती करांगे महाराज कृपा करो सेवा और सिमरन की सानू दात बख्शो। जदों साडे कोल ये चीज़ां आ जाणगियां ना, सेवा आ जाएगी सिमरन आ जाएगी, फिर सतगुरु ही वचन करते हैं नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरे जो हर हिरदे सदा वसाए। सो प्यारियो सतगुरों चरणों में अरदास बेनती यही करया करो महाराज कृपा करो। जिस तरह बाबा फरीद जी कहिंदे ने, दिलों मुहब्बत जिन सही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, रत्ते इश्क खदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते भोएं भार थिए, आप लिए लड़ लाए दर दरवेसे, तिन धन जने दी माओ आए सफल से, पर्वत गार अपार अगम बेंत नू जिनी पछाता, सच चुमा पैर मूँह तेरी पणे खदाए तू बख्शंदगी, सेख बरीदे खैर दीजै बंदगी। सो अरदास बेनती करया करो जो महाराज कृपा सानू सही रस्ता मिल गया। ये चीज़ा जिहड़ियां असीं दुनियावी लुभदे अगे पिछे साडे भज्जियां फिरदियां ने। महाराज कहिंदे रतन छपाया छुपे नहीं जे कोई रखे लकाए। जिस तों परमेशर ने कोई कार्ज करवाउणा भावें न्याणा है भावें सियाणा है भावें जवान है, क्योंकि असीं साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सलोक पढ़दे हां, तीन अवस्था महाराज दित्तियां ने बाल जवानी बिरद। पर जे असीं सिमर नहीं करते कोई परोपकार के कार्ज नहीं करते तिने भाई व्यर्थ ने। हुण कई वार असीं वहिंदे हां जिंदगी विच चलदे हां, कोई बच्चा छोटा जिहा हुंदा बहुत उच्चियां उच्चियां सुच्चियां सुच्चियां गल्लां करदा है, असीं वहिंदे हां भी बच्चा बहुत ज्ञानवान है, ये तो रब की बख्शिश है। सो प्यारे सारे ऐसे नहीं हुंदे, असीं दुनियादारी किताबां पढ़ के भी बड़ियां कोशिशां करदे हां कि असीं सानूं ज्ञान हासिल हो गया, पर नहीं, ज्ञान का प्यारियों कोई अंत नहीं है। सो महाराज गाड़ी यही अरदास बेनती करो, महाराज तेरे चरणा च नमस्कार है, हाथ जोड़ के बेनती है निम्रता साहब कृपा करो। एक फरियादी एक दी अरदास है साड़ी खैर झोली नाम दी पा दिओ सेवा दी पा दिओ। वाहिगुरु आपे सब बख्शिशां करदे ने। गुरु नानक का घर ऐसा घर है जिथे बिन मंगिया मोती मिलते ने। गुरु नानक के घरों प्यारियो साड़ी एक भावना बननी चाहिए है, जिन्ना चिर भावना नहीं बनती उन्ना चिर प्यारियों कोई कार्ज रास नहीं हुंदा। हुण असी मन च सोचा भी गुरद्वारा साहब जाना है आए हाँ, जे आपां सोचांगे नहीं विचारांगे नहीं तो किस तरह आपां अपने टीचे मुकाम ते पहुँच सकते हाँ।
ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦਾ, ਮਨੋ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਭੜਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੜਾ ਬੇਨਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

पंच शब्द तितक हर सुभागे एक हर सुभागे शब्द कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मा तुर कर्म पाया तो

जाको हर रंग लागो इस जुग में है, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणै सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइय आत्म रंग, सरणी पावन नाम त्यावन। सहज समावन संग रहाओ, जन के चरण वस है मिरहियर। संग पुनीता देही, जन की तूर देहो कृपा निद। नानक कै सुख एही, सुखहु तल गुर सेवी। अहनिस सहज दर्शन परसिय, जन्म मरण होवै सिफत खसम दी नूरे।

गुरमुख बिरलै जाने। ये पंक्ति जिस सारे शब्द का केंद्रीय भाव है, भगत जी दसते हैं कि जो मनुख अपने आप में गुरु के हवाले करके नाम सिमरता है

0: माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वर
1: गुरुदेव सखा ज्ञान पंजन गुरुदेव बंद सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मन निरोधरा गुरुदेव सांत संबुद्ध मूर्त गुरुदेव पास परस्पर गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मंचन परंपरा गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता गुरुदेव पवित्र पवित्र करा गुरुदेव आज आज गुरुदेव मंत्र हर जप करा गुरुदेव संगत प्रभ बेल कर कृपा हम मूल पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कार गुरुदेव संगत प्रभ बेल कर कृपा मूल पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर है।

जाए न को सा हल्का नाम उहा संतोषा जय पहने माँ अंग गुबारा हल्का नाम संग जियारा जय पतेरा को न सुवानी हल्का नाम तन नाग उषा जय महाप्यान तक बहु काम तय हर नाम की तम हो तुम ऊपर श्याम जय त्रिखम तुझ अकल तुम तह नानक हर हर अमृत वर के पग जना के वर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर कर नाम दास की ओर हर के नाम उदय जन को हर जस कर संत दिन रात हर हर अवघ साध कुमार हर हर जन के हर नाम निदान पाव रम जन की नोदान मांतन रंग रते रंग एक के नानक जन के विरुद्ध के हर का नाम जिनको मुकुल जुक्त हर का नाम जिनको तृप्त भुगत हर का नाम जिनका रूप रंग हर का नाम चपथ परे हर के हर नाम हर नपंग हर का नाम जिनको बढ़ियाई हर के नाम जिन शोभा पाई हर का नाम जिनको भोग जोग हर नाम चपथ कुछ नहीं वियोग जिन राता नाम की सेवा नानक पूजे हर हर गुरुआ हर हर जन के मार्ग जीना हर तन जन को आप प्रतीना हर हर जन की ओट स्थानी हर प्रताप जिन अवर न जाने ओट खोट जिन हर रस राते सिंह समान नाम रस माते आठ पहन जिन हर हर जपे हर का नाम पग प्रगने शपे हर का पग प्रगने शपे हर के पग्त मुक्त बहु करे नानक जनसन कीते तरे पार जते हर को नाम काम देन हर हर गुणगाम सप्ते उत्तम हर की कथा नाम संत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रित वसे संत प्रताप दर्द सब नसे संत का संग वड पागी पाहिए संत की सेवा नाम प्रिय नाम दुर्लभ

रतन त्याग कौडी संग रचय सा छोड़ चूट संग मचय जो छड़ना सो अस्थर कर माने जो होवन सो दूर प्राण चोड़ जाए तिसका शर्म करे संग साई तिस पर हरे चंदन ले पोतार तोय गर्द प्रीत पसंद संग होए आंध कूप में पतित बिकराल नानक कर लियो प्रभु दयाल करतूत वसु की मानस जात लोक बचारा करे दिन रात बाहर पेख अंतर अमल माया शपस नाय कुछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ स्वान अंतर अगन बाहर तन स्वा गल पासर कैसे तरे था जाके अंतर वसे प्रभाव नानक तेजन सह समात सोनंदा कैसे मार्ग पावे कर गए ले ओढ़ निभावे कहा बुझार तू बुझाए डोरा निष्कहिय तो समझाए पोरा कहा बिजन पद गावे गोंग जतन करे तो पीस और पंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत हुआ उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग साई सुहावे न चीत जो बैराई ता सुप्रीत बलुआ के ग्रह पीतर वसे आनंद खेल माया रंग रस है दृढ़ कर्मा ने मने प्रतीत काल नावे मूड़े चीत वैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रो यहाँ जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म

जय पर सत सती अमर गाए तीसरा कर को रख मन माए जय पर सा सुमन तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जय पर साध वसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जय पर साध ग्रह संग सुख वसना हर प्यार सिंह तिस रसना जय पर साध रंग रस भोग नानक सदा त्या ये त्या वन जोग जय पर साध पाठ ब्रम्बर हंडावे तिसे त्या कतर उल्लावे जय पर साध सुख से सोई जय मन आठ पैरता का जस गा विजय जय पर साध तू सबको माने मुक्ता को जस रचन बगाने जय पर साध रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दर गए मन पावे नानक पासे ती कर जावे जय पर साध रो कंचन देही लिवला वो तिस राम स्नेही जय पर साध रोला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय पर साध तेरे सगल सिदर ठाके मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताके जय पर साध तुझको न पहुँचे मन सा सा सिमरो प्रभु चे जय पर साध पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भक्त करे जय पर साधा भूखन पैरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस कीजे जय पर साध असब हस्त सवारी मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी जय पर साध बाग मिल्क तना राग प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मनवंत बनाई उठत बैठ सत से त्याई तिसे त्याय जो एक अलख है यहाँ हुआ नानक तेरी रख है जय पर साध करे पुनमो दान मनाण पैर कर तिसका ध्यान जय पर साध तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सा सा चितारी जय पर साध तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा अनूप जय पर साध तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे जय प्रसाद सुने करनाथ जय प्रसाद पेखे विस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे वसना जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले जय प्रसाद परमगत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मर मूर्तुता को जाप जय प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तुता सिमराच जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गवाए सब हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सुभर सन बसे मन सोए प्रभ दया ते मत तुम होए सर्वदान प्रभ तेरी मैं आप कछु न किनू लया

के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग पूजे प्रभ नेरा, साध संग सब होत नवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बढ़ने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा ब्रह्मा समानी, साध के संग गोचर मिले, साध के संग सदा पर फुल, साध के संग आवे वस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हो सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कत हूं तावे, साध संग अस्तित मन पावे, साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साध के संग न बीगा पैर, साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग ना ही हो ताप, साध के संग तजे सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बनाई, साध के संग न कबू तावे, साध के संग सदा सुख पावे, साध संग वस्त गोचर लह, साधु के संग अजर सह, साध के संग वसह थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे, साध के संग दृढ़े सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु के कुर्बान, साध के संग सब कुल उदार है, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है, साधु के संग सोतन पावे, जिस तन ते सब को बरसावे, साध संग तरम राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा, साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जनम, साध के संग नाही कशकाल, दर्शन पेड़ तोत निहाल, साध के संग कुलुख थर, साध के संग नरक पर हर, साध के संग यहाँ वहाँ सुहेला, साध संग बिछर थर मेला, जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न मिर्था जावे, पार ब्रह्म साध रिद वसे, नान कुदरे साध सुन रसे, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मानते विसरे, साध संग सर पर निस

सदा निर्दोष, जैसे सु सबको सुख, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि समान, जैसे राज रंग को लागे कुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीरज एक, जीव पसंद को पौधे को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का इह बनाओ, नानक जीव पाव का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैं न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन होय प्रकाश, जैसे तक ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाय अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊँचे ऊँचा, मन अपने है सबके नीचा, ब्रह्म ज्ञानी सेजन पये, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रिन्ना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चिन्ना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मिया, ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न पिया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी के एक उपरास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी के हो सो पला, ब्रह्म ज्ञानी सकलोपला, ब्रह्म ज्ञानी सगल संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी के एके रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम उदार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्म ज्ञानी अवत्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख साय निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी के होय चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का वर प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श वट पागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी के सग मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए अदाकर, ब्रह्म ज्ञानी सब का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नान ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सुख जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुग्ध जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगलकार,

इच्छा नहीं बचे, केवल भक्त कीर्तन संग्रह चे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़े अबरा नाम जपावे, नानक वैष्णव परम गत पावे, भवती भगवंत भक्त का रंग, सगल त्यागे दुष्का संग, मनते विनते सगला भरम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सा संग पापा मलख होवे, तिस भगवती कीमत उत्तम होवे, भगवंत की नैल करे नित नीत, मन तन अर्पे बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे।

जो जो जपे तिसकी गत होए सा संपावे जन कोए कर कृपा अंतर उतारे पास प्रेत मूल पात्र को उतारे सर्व रोग का उकत नाम कल्याण रूम मंगल गुण गाम काहू जूत किते ना पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखया तुर कर्म।

सुग तैस सदा आनंद तैने व्योग तैसा सुवन तैसी उस माठी तैसा अमर तैसी विखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा रजान जो बरताए साई युक्त नान को पुर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राखे तैसा दिन नाओ आपे कर्ण करावन जोग प्रापा वे सोई फन होग पसरे हो आप होय अनंत रंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग

कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन पर में उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तभी होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नव तन नाम त्याव है, नान करते का अंत न पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट

न बदे आपम कारी तनुराई तिस्करे कुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे विमान सूजन नानक दरगे परवान कोट कर्म करे हो सारे श्रम पावे सगले बिरतारे अनेक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर से अवतार अनेक जतन करा तुम नींद रवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो पला कहावे तिसे पलाई निकट ना आवे सर्व की देन जा काम मन होए को नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही होए जब वे जाने मैं पिछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग ने चलाई चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा दे बंधन टूटे गुरपर सा नानक हो छूटे सहस कटे लोग को तावे तिप्त नावे माया पाछे पावे अनेक भोग बिख्या के करे नैतिक तावे खप खप मरे बिना संतोग नहीं छोरा दे सुगुण मनोज बिटे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए कर्ण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप कर्ण करावन करने हार इसके हाथ विचार जैसी जिस करे तैसा होए आपे आप प्राप्त होए जो कुछ पुण्य तो अपने रंग सबसे दूर सबु कह संग मुझे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे ना बिन से आवे ना जाए नानक का वीर समाये आप उपदेश समझे आप अपे रिपेयर सबके साथ अपनो अपन विस्तार सब का चुस्का करने हार उसते पिन को पिछोए थान तनंतर इसे सोए अपने गलत अप करने हार तौत तो करे रंग पार मन में आ मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ समय गुर प्रसाद किने विज्ञानी सच सच सच सीना कोट मदेखिन वेले जीना भला भला भला तेरा रूपा सुंदर अपार रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी कट कट सुनी सर्व

दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुख

सिमर सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नान बिगन लागे कोई। उस्तत मन कर उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सद्व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। नैन पिख ठाकुर का रंग, साध संग से सब संग। चरण चलाओ मार्ग को, चरण चलो मार्ग को बिंद। मिटे पाप चकिए हर बिंद, कर हर कर्म सर्वन हर कथा। हर तरह नानक उज्जल मथा, वर पागी तेजन जग माहे। सदा सदा हर के गुण गाए, राम नाम जो करे विचार। से तनवंत गले संसार, मान तन मोख बोलो हर मुखी। सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पशाने। एक ओत की ओ सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या। नानक ने निरंजन जान्या, गुर प्रसाद अपन आप सूझे। तिसकी जाने तिस ना बूझे, साथ संग हर हर जस कहत। सब रोग ते ओ हर जन रहत, अंधन कीर्तन केवल बख्यान। गैस्त मय सोई निर्वाण, एक उपद जिसकी जन की आशा। तिसकी कटे जन की पासा, पा ब्रह्म जिसकी मन जिस पा ब्रह्म जिसकी जिस मन फूक। नान किसे न लागे दुख, जिस जन को हर प्रभ मन चित आवे। सो संत सुहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभ अपनी कृपा करे। जिस सो सेवक को किसते डरे, जैसा स तैसा तिष्ठाया। अपने काज में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिए। गुरु प्रसाद तब सब बोझिए, जब देखो तब सब कुछ मूल। नानक सोई सुखमय सोई अस्तूल, ना कुछ जन्मे ना कुछ मरे। आपन चल आप ही करे, आव जावन दृष्टि अंदृष्ट। आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सगलमय आप। अनक युक्त राजथाप अथाप, अविनाशी नाई कुछ खंड। तारन तार रेव ब्रह्मंड, अलख पेव पुरख प्रताप। आप जपावता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत। सगल संसार उदरे तनुमंत, प्रभ के सेवक सगल उदार। प्रभ के सेवक दुख विसान, आ मिले लय कृपाल। आपे मेल लय कृपाल, गुरु का शब्द जपई निहाल। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करे वरपागे। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन को उत्तम करमान। जो कुछ करे सो प्रभ के रंग, सदा सदा बसे हर संग। सहज सबाए होए सो होए, करने हर पिछाने सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सह तैसा दिष्टाना। जिसते उपजे तिसमाए समाए, ओ सुख निदान उन्हें बन आए। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जाने

चलत करे खिन माहे, पूर रहो पूर सब ठाए, नाना बिद कर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब काट तिसके सब तिसके नाव, जप जप

रचना सात मूल सात सात उत्पात सात करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तुझे सब भली सात नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सात नान गुरते पाई सात वचन

सो सेवक जिस दया प्रवतारे, नानक सो सेवक सा सा समारे। अपने जन का पर्दा डाके, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को दे बधाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत राखे, ताकि गदमत कोई न लाखे, प्रभु के सेवक को न पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊँचे ऊँचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह जिस प्रगटाया, निकी कीरी में कर राखे, भस्म करे लश्कर को लाखे, जिसका सास न काटत आप ताकू राखत, देकर हाथ मानत चतर करत बहु पात, किसते करत बैठे जात, मारे न राखे अवर न कोई, सब जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अल्प वडानी, बारम बार बार प्रभ जपिए, पी अमृत इन मंत्र तपिए, नाम रतंजन गुरमुख पाया, किस किस अवर नाही दिसाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जन तृप्ताने, मान तन नाम नाम समाने, उठत बैठ सोत नाम, कह नानक जिसके जन काम, बोलो जिस जय बा दिन रात, प्रभ अपने जन की ही दात, कर भक्त आत्म के चाहे, प्रभ अपने सो रिहा समाए, सो जो हुआ हो सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म बचाने, किसकी महिमा कौन बखाने, किसकी गुण के एक है एक ना जानियो, आठ पैर पर बसे हजूरे, कह नानक से जन पूरे, मन मेरे तन की ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पुछाता, सो जन सब तो का दाता, जिसकी शर्म सब सुख पावे,

चार कोट जिस तन को चार कुंठ उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित वाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनेक पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए।

Simmarasa dasum pau, pau bensai punoyas, pagit payatam bergas, titkar jaya vasyam nasi, konana kati jampasi. Tata vichar kai jan sacha, jan mareso kacho kacha, vagun biti pravsevu, avtyak san gurdevu. Eo ritna jan kao eo dar, harar simn prana dar, nikupavna shutan hare, simn sas bed vichare. हार की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चालस तेरा तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सत मीत कुटंबार बनता इंदे को तुम कवन सुनाता राज रंग माया विस्तार इंदे को तुम कवन छुटकार अस अस हस्ती रथ सवारी झूठा डंब झूठ पासारी जिंदिए तुसे जिस बुझे न बिगाना नाम सार नानक पछताना।

गाओ, सार पुरुष अधार को नाओ, सहज पाय नान गुण गाओ, गुण गाओ तेरी उत्तर स्मैल, विंस जाए हो में विफैल, होए अजंत बसे सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल, शाड़ स्यान सगली मना,

सर्वकदा कर्त कृतवान आप उत्पादन करता कगजराज के प्राण आधार जो जो जप से कोई पुनीत पग पाए लावे हमीत हम दुनिया मुझ अजान नानक रे संकुल भगवान सर्व कुल मुक्त मुक्त पाए एक नेम फल के गुण गाए अंत राज भोग दियाए हर की नाम की कथा मत पाए वो पूजन सात संगीत रसना जपने हर हर नीत परिस कर सोना

जगदीश ते छन सिदर लगत गोपीश जय जोश रूपी जो संग समावे ते किसे भूकवन देवतावे कन करावन करने हार नानक करते का नाई समार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए वाह मित्र सुत पाई जय सर्व कला पे प्रवीण तय वेद देव का कोचीन जब अपन आप उतारे तो सगन अप सगन का विचारे जय अपन ऊर्जा अपन अपने रा तय कौन ठाकर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अछल छेद पेस माया उहां किसे व्यापत माया आपस को आपे देश ते गुण का नाही प्रवेश जय एके एक एक भगवंता ते कौन चिंत किस लागे चिंता जय आपन आप अतियारा।

महान संघ अंतर प्रभु डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समगरी एक अस्कट माए अनेक रंग नाना दिष्टाए नानिद अमृत प्रभु का नाम देई मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत नाद कहना जाई अचरज विस्माद ते देखा जिस आप दिखाए नानक तिस जन सोजी पाए सो अंतर सो पार अनंत घट घट ब्या प्रिया भगवंत तन माया आकाश पयाल सर्व लोक पुन पत पाल बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बै संतर माए चार कुण दै दिस समाए तिस दे पिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मैं देख सस्या सुन खतर मैं एक बाणी प्रभु की सब को बोल आप डोल न कबू डोल सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाई गुण मोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तारे स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन में विश्वास संत जना का पेखण सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस किए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने कन करावन हार प्रभु जाने अंतर बसे बार पिहोई नानक दर्शन देख समोई आप सत किया सब सत तिस प्रभु ते सगली उत्पात तिस पावेता करे विसात तिस पावेता एक अंकार अनेक कला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप आपरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप जाए सारा पूता बरतारा सर्व नैना पे खनारा सर्व समगरी जागत अनापन साफ ही सुना आवन जाने खेल बनाया गया कारी की निमाया साव के मत अलप तो रह जो कुछ कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लै समाए इसे हो सुना ही बुरा उरे कहो किन कछ करा आप अला कर तू तद निकी आपे जाने अपने जी की आप सास तारी सब साच ओत पोत आपन संग्रह ताकि गत में कहीं ना जाए दूसर हो तो सो जी पाए तिसका किया सा परवान गुर प्रसाद नानकियो जान जो जाने तिस सदा सुख होया मिलाए लय प्रभ सोए ओ धनवंत कलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया

पर नल कब पारस परस कच कंच ना हुए चंदना सुभास जास सिमरत अंतर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हो बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर जाके दे

प्रसन्न राज जोग तख्त दियन गुर रामदास गुर अमर गुरु श्री सत कल जुग

जाम गुरु होए वल तने क्या गारव दिजे, जाम गुरु होए वल लख बाहे क्या कीजे, जाम गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर, जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सचे कर, जो गुरु गुरु अहनिस जपै दास पट बेंत कहे, जो गुरु नाम रिद महतर है सो जन्म मरण दोथे रहे, जो गुरु गुरु अहनिस जपै दास पट बेंत कहे, जो गुरु नाम रिद महतर है सो जन्म मरण दोथे रहे।

समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखस फारे कर आज। फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बो साज। सोदामा अपदाते राखिया गन का।

कहो टल गुर सेविया निस सहज सुभाय दर्शन परसियाय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसोह कुरसोह चटीऐ तुद डिठी सच्चे पातशाह बाल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद साह जिस पास बहिठिया सोही है सबना दा जिस पास बैठिया सोही है सबना दा सतना

0: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं
1: नमो इष्टिष्टे नमो तंत्र तंत्रं
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासि
1: अनुपे अरूपे समस्तो निवासि
0: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता
1: अधो उर्ध गंगा को घर्ता
0: परं परं परमेश्वरं प्रोक्ष पालं।

0: प्रजा जिन आप सवारी
1: सिवकन को सब गुण सुख दियो संतन को पल मोहबत कियो
0: कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानत
1: चींटी ते कुंचर अस्तुला सब पर कृपा दृष्ट कर फुला
0: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी
1: एक एक की पीर पहचाने कट कट के पट पट की जाने
0: जब कर करा कर तारा प्रजा तर तब दे अपारा
1: जब आकर कर दो कबू तुम मैं मृत दे तर सबू
0: जेते बदन से सब तारे।

0: खाना जाए पसारा के विद सजा प्रथम संसार
1: एक है रूप अनूप स्वरूप पारंग पे और आफ गई पुपा
0: अंड जे जेर जिस तेज की नी उत्पज कान बो रच दी नी
1: को फूल राजा हो बैठा को सिमट पर संकेरे गैठा
0: सगरी सिस दिखाए चंपव आज जुगा स्वरूप संपव
1: अब रचा मेरी तुम करो सिख बाण सिख संगरो
0: दूसरे जिते उपट उपाता सकल मलेश करो रणकाता
1: जे असुष्ट सरनी परे तिनके दुष्ट कितव मरे
0: तिनके तुम संकट सपटारे
1: जो कल को एक बार ये ताके काल निकट नहीं है
0: रचा हुए ताए सब काला दुष्ट अशितरे तत्काला
1: कृपा दस्तन जाए न हरो ताके ताप तनक मोहरे हो
0: रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शास में सके न कोई
1: एक बार जिन तुम्हें सवारा काल फास दे ताए उबारा
0: जिन नाम त्यारो कहा दर्द दुष्ट दुख तेरा
1: खरे केत में सन त्यारी आप आदे लो बारी
0: सर्व टोर मोहो सहाय दुस दोते लेओ बचाई
1: कृपा करियम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुभराता
0: कि बिक सकल देखो हता दुस दोकिन को शे करता
1: श्री अस्तुच पे दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला।

0: सदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए
1: हर आप अमूलक है पार्थना के नानका
2: जिन हर पल्ले पाए
3: हर रास मेरी मन मंजारा हर रास मेरी मन मंजारा सदगुर ते रास जानी
2: हर हर नित जपियो जियो लहा कटे।

0: प्रेम की प्रीत सवारे
1: पाए सके पद्मापत वेद देव पेदोचारे
0: रोजी राज विलोकित राज करो कृहान की रोजी नटारे
1: पतंग को रंग पुजंगम भूत पवेख भवान बनाए
0: देव देव खपे मेव ना पेव लख्यो परम सिंह परमाए
1: वेद पुराण कतेव कुरान सेवत के कर हाथ नाए
0: पूर्ण प्रेम पर भाव बिना पस्यों किन सिर पद्मापद पाए
1: आदर नंत गादत वैक्सो भूत पवेख भवान अप

0: जगता महल की उपसारा
1: आद परखा विगत अविनाशी लोक चतुर्दश ज्योत प्रकाशी
0: हर्ष कीर के बीच समाना राव रंग ये एक सर जाना
1: अद्वै लाख परखा विगामी सब कट कट के अंतर जामी।

0: हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभु पूरन पैज रखाई।
1: बिलावल मोहल्ला पंजवा ताती वो लगी पार ब्रह्म शरणा
0: चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई
1: पूरा पेट

जब तो प्रेम खेलन का जाओ सिर तर तली गली मेरिया इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कारण ना कि जय इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कारण ना कि जय सो कहो टल गुर सेविया एहनिस सहज सुभाय दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सच्चा पातशाह सिर सहांदै साह जिस पास बैठिया सोही है

बिखियान सौ काही हृदय निमख न हो ही उदास कहो नानक पज हर मना पर न जम की फास।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग एक संग पंच ब्रंगन तला पुनः सलेखी की पई बारी ए भैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनावे है बंगाल मध माधव गावे है ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलापै है संग रागनी पंचों थापै है गोंड करी अरदेव गंधारी गंधारी सिहती उचारी तनासरी ए पांचो गाही मालरा कौशक संगलाई मारू मस्त अंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उभारा खौखट ओ भौरानंद गाय अष्टमाल कौशक संगलाए पुनिया ओ हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावही तेलंगी देव करी आई बंसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी लै भर जा संगलाई पंचो वार जा सुरमानंद भास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सोहाए सरसवान ओ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कुमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुनियाई दीपक की बारी

कुंतल और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौराव कानरा कल्याणास्त पुत्र दीपक के जाना शामिल श्री राग वह गावे पांचो संग ब्रंगन लावे बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे आसावरी ते पाछे सिंधवी अलापी श्री राग से पांचो थापी सालू सारग सागुरा और गोंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खस्तम मेघ राग वै गावै पांचो संग ब्रंगन लावै सूरठ गुण मलारी तुनी पुन गावै आसा गुनगुनी उच्चै सुर सुहो पुन कीनी मेघ राग स्यो पांचो चीनी बैरा धर गज धर केदारा जबली धर नट औ